साई राम डियर लिसनर्स, भगवान हैज स्ट्रेस्ड ऑन मेनी ओकेजन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ ह्यूमन बॉडी. अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अ रेयर ब्लेसिंग दैट इज कन्फर्ड अपॉन अस. इन टूडेज डिस्कोर्स बाबा स्पीक्स ऑफ हाउ वी शुड यूज द बॉडी टू रिडीम अवर लाइव्स. लेट अस नाउ लिसन टू अ डिवाइन डिस्कोर्स दैट भगवान बाबा डिलीवर्ड ऑन 17th of May 2000 ड्यूरिंग द समर कोर्स on Indian culture and spirituality in Vrindavan, Bangalore.